रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 03131394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा सता सुखार पर सवाबई की होम।

0: को बेलडोना डबल एक्शन फार्मूला बेलडोना ब्यूटी के इस्तेमाल की मजीद मालूम दोबारा सोचे 93693393 बेलडोना।
1: राशि जी राशि बिल्कुल FM 93 रेडियो दिलबर चार सदा जमुंग दगा प्रोग्राम लिंक थे उदा दिन अलावा पर लघु साधन की बात जमुंग दगा प्रोग्राम पर FM 94 रेडियो दिलबर सवाबई बाने हम लिंक छी जी
2: यो
1: सुमरा द चार सदी याद सवाबई ख्वागा लिसनर छी दा टाइम जमा आवाज उरी खगु दस्ता सुटूलू।

0: मेडिकल वार्ड जनरेटर और नोटो जरूरी सहूलियात मौजूद थी। नो पतयात साते और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा में लीलार टोपी। मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878। द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

ऑफ केपी के आवाज हो रही जी, हैदर अली मोहम्मद आवाज हो रही हो सवाल गुरुजीरा गुरुजीनो जरूर तो बिल्कुल इंतजार घूम लेट सी लाइव कॉलर था सुनते लाइव कॉलर आते स्टूडियो लाइव कॉल नंबर 0312-88-88 150 माध्यम स्टूडियो लाइव कॉल नंबर और स्टूडियो द लाइव कॉल नंबर आन की जिदा नंबर नंबर नंबर बान की कॉल बमुंग मिलाओ भी मुंग सर बखबरी कोई जी 0312।